इतने बहुत ऐसी तेज किताबों के तमोगे इनको सोना लगे वो यार ही सक मिलते को इन्हें इससे वे की बात एक तब तो देता उस दिन ना कि चौस मिस